0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: सही है सही
0: है। मजा ही मजा ब्रो। चलो शुरू करते हैं।

Elumbu FM 89.6 megahertz. हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्जमा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।